0: सुनिस न अहिले हाम्रो गर्नेमा
1: इस समय को साथ में जितू सुनचादी पसल वालिंग आठ पेट्रोल पंप को नजिक जैसी पंद्रह जाने बाटो तर्फ विश्वासिलो भरपर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने
0: रेडियो आदि खोला 105.4 आपने ख्याल रखना।

एस आदि फ्लाग खबर को साथ में हिमाल सुनसादी पसल उच्च क्वालिटी का आकर्षक कर गहना ग्यारेटी का साथ खरीद बिक्री असल तपाईकै सुख दुख को साथी हिमाल सुनसादी पसल वालिंग बजार सैंजा।

0: पहले हम लोग अनिमा 9 बजे था।
1: ए समय को साथ में जितू सुनचांदी पसल वालिंग 8 पेट्रोल पंप को नजिक जैसी 15 जाने बाटो तर्फ विश्वासिलो भर पर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने ठाउँ
0: सुंदर रेडियो आदि खोला 105.4
2: नमस्कार म देवीराम पराजुली जिरे खोर्सानीको भोकलायो तपाई यतिखेर सुन्दै हुनुहुन्छ आदि खोला एफएम 105.4 मेगाहर्ज।

मा सजिलो गरी सुनौ बुझौ बुझौ सुनौ हटाऊ कन्फ्युजन ग्यास प्रदूषण यत्र कुदुली डट कम ग्यास प्रदूषण यत्र कुदुली डट कम डट कम डट कम